0: place. He picks up a man to the off the ball, it's winds from the game. And ends. So Edo is gone, India going at 9 in error, 1 for 72.
1: भारत नीदरलैंड्स के बीच इस समय महिला विश्व कप ट्रॉफी 2020 ओवर का विश्व कप है खेला जा रहा है इंग्लैंड की धरती पर और भारत का इस टूर्नामेंट में ये दूसरा मैच है पाकिस्तान को पराजित करके भारत ने बहुत ही मजबूती के साथ अपने इरादे जाहिर किए हैं महिलाओं ने और नीदरलैंड्स का जहां